बच्चा मर गया घर में, छोटा बच्चा था, गरीब औरत ने उस बच्चे को गुस्ल दिया, उसे कफन पहना दिया और उसे एक तरफ कमरे के एक कोने में उसे रख दिया। उसका खाविंद आया, बच्चे के बारे में पूछा, कहा अब वो ठीक है, अब वो आराम कर रहा है। खाविंद को खाना दिया, खाने के बाद उसने जो जेब जीनत औरत अपने मर्द के लिए करती है वो की, और जो अपने खाविंद का हक है वो उसको दिया। सुबह फजर से पहले जब मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनसे कहती हैं कि अगर कुछ लोग हमें कोई चीज दे दें आरियत के तौर पर, वक्ती तौर पर, कि हम इस्तेमाल करके वापस कर दें और फिर वो अपनी चीज हमसे ले लें, मांग लें, तो क्या उनको देना चाहिए? नहीं, उनका देना चाहिए, कैसे नहीं देना, उनका हक है। तो उन्होंने फरमाया एहतसिब इब्न का इंद अल्लाह, आपका बच्चा मर गया है, इन लिल्लाह इन इलैहि राजिऊन। तो उसी से शदीद गुस्सा आया कि तुम कैसी औरत हो, मुझे रात की नहीं बताया और ये सब कुछ करने के बाद अभी मुझे बता रही हूं। अभी मैं जाता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते और ये किस्सा बयान करते हैं कि मेरे वतन इस तरीके से किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि रात को जुमा हुआ? उन्होंने कहा जिया हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ की, और जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उस एक बेटे के 10 बेटे पैदा हुए बाद में। मदीने में सबसे ज्यादा औलाद सैयद अनस बिन मालिक उनके इस भाई की थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के लिए दुआ की थी। बाज़ लोग कहेंगे ये तो सहाबिया थी, कोई और मिसाल बयान करें। शुरैह कादी जो है ये तबीइन में से हैं और काजी थे सैयद उमर के दौर में, सैयद अली बिन अबी तालिब के दौर में मशहूर काजी थे। इमाम शाबी आमिर बिन शहील शाबी ये भी ताबीन थे। एक मरतबा दोनों बैठे हुए थे तो इमाम शाबी जो है उन्होंने उनसे सवाल किया भाई आप कैसे, आप अपने घर वालों के साथ कैसे रहते हैं? वही इस्तौसुबिनिसाई खैरा जो मैंने जिक्र किया, कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा मेरी शादी को 20 साल हो गए, एक मरतबा भी झगड़ा नहीं हुआ, एक मरतबा मैंने झगड़ा किया, गलती मेरी ही थी। अरे शादी को 20 साल हो जाए और घर में झगड़ा ना हो, मियां बीवी का आपस में झगड़ा ना हो? कहते एक बार मैंने झगड़ा किया और मैं ही जालिम था, वो बेकसूर थी 20 सालों में। तो इमाम शाबी को ताज्जुब हुआ, भी मुझे बताए आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ? तो शुरह कावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस रात मैंने इस औरत से शादी की और मैं इसके करीब गया तो मैंने इतनी खूबसूरत औरत देखी मैंने कभी देखी ना थी, इतनी खूबसूरत। कहते तो मैंने यह कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा पहले करो, उठ के चला गया, वजू करके नमाज पढ़ना शुरू की। मैंने नमाज पढ़ी, जब मैंने सलाम फिरा देखा तो मेरे पास बैठ के वो भी नमाज पढ़ रही है। जैसे मैंने नमाज पढ़ी जितनी रखा उतनी उसने पढ़ी, मेरे नमाज से उसने नमाज पढ़ी, मेरे सलाम से उसने सलाम किया। तो मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे कहा अला रसल कया अबा उमैया, ए अबू उमैया जरा ठहरो। अबू उमैया उनकी कुनियत थी, अदब देखें, देख औरत के अल्फाज देखें, अभी जरा ठहरे। अबू उमैया साहब जो है वो शक्ल की तरफ देख रहे हैं भी क्या हो गया। मैं आपसे एक अजनबी औरत हूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं अगर आप इजाजत दें। कहती हैं आप कहें। कि तो उस औरत ने खुतबा शुरू कर दिया, इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊधु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सैयाति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदल्ल लहु व मन युदलिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद,